0: रेडियो मिरमिरे 89.4
1: मेगाहर्ज।
2: होइन के आउँछ रे, कुन रेडियोमा आउने हो
3: नि?

0: 91.4 MHz।
1: सुगम संगीत को क्षेत्र में पछिल्लो समय कुन कुन एल्बमहरु बजारमा आए।

तिनी पारिचुके थिएन जिन वेक्सर केतन बियाङ गर्दै रेभन चस्मा कन्ज ठिकठाक प्रस्तुति रमाइलो ठिकठाक चुपारङ्गन भिन्नै ओरिजिनल हिप।